0: रेडियो साइनम 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: हार्दिक निमन्त्रणा राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांकोटी होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम बेघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांकोटी होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

बीच निमन्त्रण राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

0: रेडियो साइनम 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो। इट्स 12 पीएम।

हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण समिति।

हार्दिक निमन्त्रणा। राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण संघ।

निमन्त्रणा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथज्यूको संकल्पमा गोरक्षपीठको आदेश अनुसार 2083 वैशाख 17 गतेदेखि 59 दिनसम्म सञ्चालन हुने श्री शिव गोरक्ष योगी नरहरिनाथ सांस्कृतिक होम महायज्ञ 2083 हवन सामग्री सहित उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान बागेश्वरी आश्रम देवघाट धाम चितवन। आयोजक श्री बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रम एवं श्री सनातन सांस्कृतिक संपदा संरक्षण समिति।

0: क्या कर रही है तेरे भी आगे
1: बावलट
0: कौन
1: पता नहीं दानवी की गाड़ी चला रहा था बच्ची बच्ची बच्ची हूँ मैं
2: था तो है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है।